0: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
1: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
2: Elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power. Only on WeOn.
3: This is Defense Pulse.
4: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
5: But the role of infantry, the role of foot soldiers is not going to be changing, and neither is it changing in the Ukraine-Russia conflict.
6: Man unmanned mission together, very much like how the aircrafts and the drones work. They both have specific tasks that is there, and that's the naval battlefield that it is going to be.
7: So training our defense personnel is becoming more and more critical to adapt to the ever-changing battlefield.
8: Data, software, algorithms are increasingly becoming key instruments to the warfare.
9: To sustain an aircraft, you need to be able to manufacture parts locally.

मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या है। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ। स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।

0: This is Defense Pulse.
1: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
2: But the role of infantry, the role of foot soldiers is not going to be changing, and neither is it changing in the Ukraine-Russia conflict.
3: Man-unmanned mission together, very much like how the aircrafts and the drones work. They both have specific tasks that is there, and that's the naval battlefield that it is going to be.
4: So training our defense personnel is becoming more and more critical to adapt to the ever-changing battlefield. Data, software, algorithms are increasingly becoming key instruments to the warfare.
5: To sustain an aircraft, you need to be able to manufacture parts locally.
6: अगर आप अभी 25 के हैं 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है तो ऐसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए ट्राई इट योरसेल्फ।
7: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है सबसे पहले आपको करना क्या है क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या है आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।

0: All right, with that, we call a wrap to this bulletin. The news and updates will follow on the other side. You're watching Beyond World is on. Just stay tuned.
1: गाइस मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए एनी सजेशंस जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल
2: अब पूरी पिक्चर देख लो लोन ऑप्शंस बिग
3: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग ब्रांच नेटवर्क बिग
2: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता और जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: गाइस, मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल.
2: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग,
3: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग,
2: ब्रांच नेटवर्क बिग.
4: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता.
5: और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
6: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WeOn.

0: In France, robots and AI are being tested for a very different kind of performance. Hospitals and care homes are trialing technology designed to support people living with Alzheimer's and other neurodegenerative conditions. One of the tools is an AI-powered phone. The AI assistant called Livana can recreate the voice of a patient's loved one. Family members provide details about happy memories, which the AI uses to keep the conversation going in a natural-sounding voice. The caregivers say that it can help calm people down during periods of extreme agitation.
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए क्वाला intel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.

0: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या है। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।
2: Elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power. Only on WeOn.

स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के

0: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
1: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग

0: यार लोन भूल गया मैरी सजेस्ट अ गुड बैंक
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
4: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia, and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
5: Maddie, I need to open a savings account.
1: Arey, Ujjivan Small Finance Bank.
5: Small bank?
1: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RD, everything. There's nothing small about them.
5: Okay.
3: Oh, Jeevan, nothing small about us.
6: Stock market se juda hua koi bhi aapke paas sawal hai to

आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।

0: In France, robots and AI are being tested for a very different kind of performance. Hospitals and care homes are trialing technology designed to support people living with Alzheimer's and other neurodegenerative conditions. One of the tools is an AI-powered phone. The AI assistant called Livana can recreate the voice of a patient's loved one. Family members provide details about happy memories, which the AI uses to keep the conversation going in a natural-sounding voice. Where caregivers say that it can help calm people down during periods of extreme agitation.
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.
2: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists,

0: यार लोन भूल गया मैरी जस्ट अ गुड बैंक
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
0: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
3: द वर्ल्ड इज चेंजिंग द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
4: Maddie, I need to open a savings account.
1: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma khollo.
4: Small bank?
1: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business edge current account, business Maxima business privilege, RDF, there's nothing small about them.
4: Okay.
0: जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: अगर आप अभी 25 के हैं 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर क्वाला में अभी 25 साल की हूँ 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए ट्राई इट योरसेल्फ
6: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं मेरे पास 10,00,000 रुपए हैं मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी ये तो मेरा सवाल है आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं
7: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है सबसे पहले आपको करना क्या है क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या है आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं लेकिन

मेरा सवाल था क्वाला से, तो अब आप जाइए क्वालाइंटेल.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ। नो मोर अंडरस्टैंड बेटर थिंक अहेड। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम, यू आर वॉचिंग ग्रेविटास विद मी Molly Gambhir। Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists, gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.

स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा

0: तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।
1: नो मोर, अंडरस्टैंड बेटर, थिंक अहेड। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम, यू आर वॉचिंग ग्रेविटास विद मी मॉली गंभीर। Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists, Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.

0: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या है। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।
1: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.

अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे भी आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।

0: मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है
1: जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स।
0: यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं।
1: ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से।
0: तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।
2: Elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power. Only on WeOn.
3: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
4: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others

0: Well, before we get you more, let's cut across to New Delhi, where Delhi police is holding a press conference. Take a look.
1: उक्त सूचना अत्यंत ही अल्प समय में हुई है, जबकि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार जंतर मंतर पर कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवेदन कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से कम 10 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ये उल्लेख करना भी इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस जनता पार्टी के पूर्व आचरण के अनुसार एक अलग अवसर पर पूर्व में दिए गए उनके द्वारा अंडरटेकिंग्स तथा लॉफुल डायरेक्शंस को भी नहीं फॉलो किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किए जाने पर पूर्व में दिए गए कानूनी दिशा निर्देशों को नहीं पालन करने तथा वर्तमान में पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर एवं ट्रैफिक रेगुलेशन की स्थिति को देखते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि न्यू दिल्ली इलाके में 163 बीएनएसएस 163 बीएनएसएस की धारा लागू है, जिसके तहत पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी मेंटेन करने के लिए रीजनेबल प्रिवेंटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि 163 बीएनएसएस के उल्लंघन करने या किसी तरह का वैंडलिज्म या पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन करने पर इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा पूर्व में जजमेंट्स के तत्वाधान में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। वी हैव रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फ्रॉम सौरव दास, को कन्वीनर ऑफ कांग्रेस जनता पार्टी। द एप्लीकेशन इज रिगार्डिंग एन इंटीमेशन फॉर प्रोटेस्ट ऑन 10th ऑफ अक्टूबर एट जंतर मंतर। द प्रोटेस्ट वॉज रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी। This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received prior 10 days prior the protest which is planned. Further, it is also important to mention that in the earlier occasion when Kokro Janta Party was given the permission to hold protest there, they did not follow the lawful directions and did not follow the own undertakings given at that point of time. So therefore, because of not following the legal directions and their own undertaking and the prevalent law and order situation and to maintain public safety and law and order and traffic regulation, this time the permission is rejected, it is not given. It is important to mention that in New Delhi area, 163 BNSS is in operation and under which to maintain public order and safety, reasonable preventive restriction is at place. It is further important to mention that if anybody violates the 163 BNSS provisions, then proper legal action will be taken against them. Thank you.
2: How many times the BJP violated the previous class and getting the 13 FIs were there, which has been voided by the court? So how many instances was there because of the BJP violated these norms and this led to cancellation of the
1: We will provide it later because it is an earlier occasion, it happened on earlier occasion. We'll provide all the information. If you want any more information, we'll provide it later. Thank you.
2: मेरा भी सवाल ये था।

0: know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं. मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के

0: know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.
1: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power. Only on WEON.
2: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं. मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी. ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं.

क्वालापर आपको जाना है, जहाँ लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट। यहाँ पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए क्वाला इंटेल.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।

0: In France, robots and AI are being tested for a very different kind of performance. Hospitals and care homes are trialing technology designed to support people living with Alzheimer's and other neurodegenerative conditions. One of the tools is an AI-powered phone. The AI assistant called Livana can recreate the voice of a patient's loved one. Family members provide details about happy memories, which the AI uses to keep the conversation going in a natural-sounding voice. Where caregivers say that it can help calm people down during periods of extreme agitation.
1: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर. क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है. वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए. क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए. ये दिखाएंगे

0: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।
1: This is Defense Pulse.
2: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
3: But the role of infantry, the role of foot soldiers is not going to be changing, and neither is it changing in the Ukraine-Russia conflict.
4: Man unmanned mission together, very much like how the aircrafts and the drones work. They both have specific tasks that is there, and that's the naval battlefield that it is going to be.
5: So training our defense personnel is becoming more and more critical to adapt to the ever-changing battlefield. Data, software, algorithms are increasingly becoming key instruments to the warfare.
6: To sustain an aircraft, you need to be able to manufacture parts locally.

0: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
1: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
2: Elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze.

0: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।
1: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
0: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
2: Elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WEON.

0: know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.
1: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर. क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है. वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए. क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए. ट्राई इट योरसेल्फ.
2: In France, robots and AI are being tested for a very different kind of performance. Hospitals and care homes are trialing technology designed to support people living with Alzheimer's and other neurodegenerative conditions. One of the tools is an AI-powered phone. The AI assistant called Livana can recreate the voice of a patient's loved one. Family members provide details about happy memories, which the AI uses to keep the conversation going in a natural-sounding voice. Their caregivers say that it can help calm people down during periods of extreme agitation.
3: This is Defense Pulse.

0: We Own. World is One.
1: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on We Own.
2: This is Defense Pulse.
3: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
4: But the role of infantry, the role of foot soldiers is not going to be changing, and neither is it changing in the Ukraine-Russia conflict.
5: Man unmanned mission together, very much like how the aircrafts and the drones work. They both have specific tasks that is there, and that's the naval battlefield that it is going to be.
6: So training our defense personnel is becoming more and more critical to adapt to the ever-changing battlefield.
7: Data, software, algorithms are increasingly becoming key instruments to the warfare.
8: To sustain an aircraft, you need to be able to manufacture parts locally.
9: अगर आप अभी 25 के हैं 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर. क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है. वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए. क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए. ट्राई इट योरसेल्फ.
10: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या है. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.
11: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter.

0: know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए क्वाला इंटेल.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.

0: In France, robots and AI are being tested for a very different kind of performance. Hospitals and care homes are trialing technology designed to support people living with Alzheimer's and other neurodegenerative conditions. One of the tools is an AI-powered phone. The AI assistant called Livana can recreate the voice of a patient's loved one. Family members provide details about happy memories, which the AI uses to keep the conversation going in a natural-sounding voice. Where caregivers say that it can help calm people down during periods of extreme agitation.
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं. मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी. ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं.

0: I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक.
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए. देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
2: द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द हेडलाइंस आर शिफ्टिंग, द फ्यूचर इज बीइंग रिटन एवरी डे. From around the continents, Asia and India, WEON brings you the stories that shape our world. Grounded, geopolitical, global. WEON. World is one.
3: Guys, mera teesra store. Ab expansion ke liye na ek bank chahiye. Any suggestions? Ujjivan Small Finance Bank. Small?
1: Small? Ab puri picture dekh lo. Loan options, big. Savings or FDP interest, big. Branch network, big. Agar small hota, toh main sad mein hota. Ujjivan, nothing small about us.

0: हम लोग तैयार कर रहे हैं और सबूत हम दे देंगे। उसके अलावा जो कुछ उनको देना है वो सभी इन्फॉर्मेशन हम देंगे। और उसके अलावा खास करके जो मोदी जी और शाह जी जो इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात कर रहे हैं और उसी तरफ उनका कदम भी उठ रहा है, तो इसीलिए हम सब गए थे, उन्होंने ध्यान से सुने हैं और आगे उसके बारे में पूरा छानबीन करके संबंधित लोगों से बात करके उसको क्या करना कैसा करना ये आगे के कदम हम उठाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। इसीलिए हम लोग इसके बारे में गए थे और हमको संतुष्ट होकर आना पड़ा क्योंकि वो पहली बार अपने आवाज हमारे साथ मिला है और जनता के आवाज को उन्होंने सुना है। अब आपके सामने राहुल जी बात करेंगे, ममता जी बात करेंगे।
1: पहले राहुल जी बोलो ना।
0: चलिए आप
1: बोलिए। खड़गे जी ने जो कहा है सच है कि हम लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया है लेकिन उन्होंने इतना नेगेटिव नहीं है, हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड हमको सबूत चाहिए, यू प्लीज सेंड अस द डिटेल्स एविडेंस। वी सेड यस, राहुल जी ऑल्सो सेड यस, वी विल सेंड यू द डिटेल्स एविडेंस एंड नॉट ओनली वी द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो दे सेड नाउ देयर इनर पीपल ऑल्सो एक्सप्रेस्ड ऑल दिस कंसर्न, सो कंट्री इज कंसर्न वेरी मच एंड यू एज ए कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज टेक प्रॉपर केयर सो दैट द डेमोक्रेसी शुड रिमेन एंड इट्स रिपब्लिक इंडिया मस्ट कंटिन्यू। दिस इज वी आर टूगेदर इंडियन अलायंस एंड वी आर वेरी स्ट्रांग, इट इज नॉट दैट ओनली कांग्रेस पार्टी इज सेइंग, इट इज द इंडिया अलायंस इज स्पीकिंग, मोर देन 60% द वॉइस ऑफ द पीपुल वी आर स्पीकिंग एंड आई थिंक ही इज वेरी मच पॉजिटिव and she responded that I will investigate number one. Number two she said that yes sir, you send the evidence, without evidence how do I get this, but that time I also said that please see that you can ask the report from the government, you can ask the report from the CEC, you can ask the report from other sources also, but you ask us and Rahul ji has taken the charge that we will send all the details to him so he can send all the evidence sabut jo chahiye unko bhejne ke liye.
2: I just sat in a quite a unbelievable meeting. Mamta ji is saying it mildly. Let me say it as it happened. The first thing is we took a memorandum to the President of India. On that memorandum we clearly said that the Prime Minister, Mr. Amit Shah, Gyanesh Kumar, have conspired to destroy Indian democracy. The President in no way denied what we said, in no way questioned what we said, in no way argued what we said. She accepted our statement and then she said to us that we need to bring her proof of election chori. I said that the proof of election chori is known to the whole country. State after state has been stolen. 24 election, as you know, has been stolen. And yet the President wants us to take saboot proof to her. This same group of people will very happily take the proof of election chori that we have collected to the President of India when she is ready to accept it. Main thing to say is that I actually expected the President of India to deny that vote chori is taking place. I expected the President of India to say that no, actually India has a free and fair election system, and I was shocked and I was stunned that the President of India accepted what we said. I'd like to repeat what I said in Hindi.

0: भी अभी प्रेसिडेंट के साथ हमारी मीटिंग हुई। एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए, और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी। मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू। अच्छा, ये देखिए, ये सबसे पहले
1: All right, so major statements being made there by Rahul Gandhi. Remember that row which is only heating up over the electoral roll revision. You heard what Rahul Gandhi is saying at this point, also talking about what he's calling evidence on that front. We are shifting focus for now and getting you the latest on that growing India-US row now over the Green Card program.

0: campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WEON.
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.
2: In France, robots and AI are being tested for a very different kind of performance. Hospitals and care homes are trialing technology designed to support people living with Alzheimer's and other neurodegenerative conditions. One of the tools is an AI-powered phone. The AI assistant called Livana can recreate the voice of a patient's loved one. Family members provide details about happy memories, which the AI uses to keep the conversation going in a natural-sounding voice. Where caregivers say that it can help calm people down during periods of extreme agitation.

0: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
1: दिस इज डिफेंस पल्स।
2: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.

0: मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन. स्मॉल
1: स्मॉल.
2: अब पूरी पिक्चर देख लो. लोन ऑप्शंस बिग,
3: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग.
2: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता. और जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस.
4: In West Asia, every move shifts the world's balance. Wars, ceasefires, alliances, power never stands still. Because what happens in West Asia never stays in West Asia. This is the West Asia Post.

0: मेरा तीसरा स्टोर. अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए. एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल
1: स्मॉल

0: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
2: In France, robots and AI are being tested for a very different kind of performance. Hospitals and care homes are trialing technology designed to support people living with Alzheimer's and other neurodegenerative conditions. One of the tools is an AI-powered phone. The AI assistant called Livana can recreate the voice of a patient's loved one. Family members provide details about happy memories, which the AI uses to keep the conversation going in a natural-sounding voice. Where caregivers say that it can help calm people down during periods of extreme agitation.
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।

0: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
1: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.
2: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे।

0: Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।

अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे, तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।

0: आपके से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊं, एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी, ये तो मेरा सवाल है। आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं।
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या है। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए क्वाला intel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।

अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे भी आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।

0: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WEON.
1: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है. सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स. यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये देखिए इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या. आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से. तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ.
2: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir.

0: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।
1: दिस इज डिफेंस पल्स।
2: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
3: But the role of infantry, the role of foot soldiers is not going to be changing, and neither is it changing in the Ukraine-Russia conflict.
4: Man unmanned mission together, very much like how the aircrafts and the drones work. They both have specific tasks that is there, and that's the naval battlefield that it is going to be.
5: So training our defense personnel is becoming more and more critical to adapt to the ever-changing battlefield. Data, software, algorithms are increasingly becoming key instruments to the warfare.
6: To sustain an aircraft, you need to be able to manufacture parts locally.
7: Campaigns. Elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives, expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and

0: मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।
1: In France, robots and AI are being tested for a very different kind of performance. Hospitals and care homes are trialing technology designed to support people living with Alzheimer's and other neurodegenerative conditions. One of the tools is an AI-powered phone. The AI assistant called Livana can recreate the voice of a patient's loved one. Family members provide details about happy memories, which the AI uses to keep the conversation going in a natural-sounding voice. Where caregivers say that it can help calm people down during periods of extreme agitation.
2: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। तो ऐसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया, तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।

0: reduce the number of metro station closures and ensure that the services continue in a regulated manner. The Solicitor General, meanwhile, said he would consult the government on proportionate measures. You see, the court's concern is not simply about whether the protests can proceed. It's about whether security measures can be imposed without paralyzing daily life. The apex court has stressed that peaceful protest is a right, but it must operate within the law. And the confrontation is now widening politically.
1: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
2: This is Defense Pulse.
3: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
4: But the role of infantry, the role of foot soldiers is not going to be changing, and neither is it changing in the Ukraine-Russia conflict.
5: Man unmanned mission together, very much like how the aircrafts and the drones work. They both have specific tasks that is there, and that's the naval battlefield that it is going to be.
6: So training our defense personnel is becoming more and more critical to adapt to the ever-changing battlefield. Data, software, algorithms are increasingly becoming key instruments to the warfare.
7: To sustain an aircraft, you need to be able to manufacture parts locally.
8: स्टॉक मार्केट पर आपको भी पैसा कमाना है, लेकिन आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वाला पर आपको जाना है जहां लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग अबाउट मार्केट्स। यहां पर आप अपने मन का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। ये देखिए, इसने पूरा तरीका बता दिया है और ये भी बता दिया है कि आपको करना क्या है। आपको क्वाला ने ये तो बता दिया कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये मेरा सवाल था क्वाला से। तो अब आप जाइए qualaintel.com पर एंड ट्राई इट योरसेल्फ।
0: Know more, understand better, think ahead. Hello and a very warm welcome. You are watching Gravitas with me, Molly Gambhir. Get the facts, not the bombast. On the 26th of March, dynamic pricing, Baloch separatists. Gravitas cuts out the clutter. Gravitas keeps calm when others scream. Gravitas brings news to life. Weekdays, 9 p.m. IST, 3:30 p.m. GMT. Gravitas. Seeing is believing.

मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी। ये तो मेरा सवाल है, आप अपनी

0: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर। क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है। वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए। क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया। तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ।
1: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics.

0: In France, robots and AI are being tested for a very different kind of performance. Hospitals and care homes are trialing technology designed to support people living with Alzheimer's and other neurodegenerative conditions. One of the tools is an AI-powered phone. The AI assistant called Livana can recreate the voice of a patient's loved one. Family members provide details about happy memories, which the AI uses to keep the conversation going in a natural-sounding voice. Where caregivers say that it can help calm people down during periods of extreme agitation.
1: स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी आपके पास सवाल है तो आप इस प्लेटफॉर्म क्वाला से पूछ सकते हैं. मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मैं स्टॉक मार्केट में कहां लगाऊं? एक ही विंडो में पूरे मेरे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की कहानी बता दी, मतलब एक पूरी कुंडली क्रिएट कर दी. ये तो मेरा सवाल है. आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल लैंग्वेज में सवाल पूछ सकते हैं.
2: This is Defense Pulse.
3: It's not the same world that it used to be 10 years back. Drones are how the wars are being fought right now.
4: But the role of infantry, the role of foot soldiers is not going to be changing, and neither is it changing in the Ukraine-Russia conflict.
5: Man unmanned mission together, very much like how the aircrafts and the drones work. They both have specific tasks that is there, and that's the naval battlefield that it is going to be.
6: So training our defense personnel is becoming more and more critical to adapt to the ever-changing battlefield. Data, software, algorithms are increasingly becoming key instruments to the warfare.
7: To sustain an aircraft, you need to be able to manufacture parts locally.
8: Campaigns, elections, alliances, controversies, and power play. Stories that analyze global and domestic politics. A dedicated show with varied perspectives. Expert take, citizens' voices, detailed ground reports, and in-depth coverage from political corridors of the world. This is Race to Power, only on WeOn.
9: अगर आप अभी 25 के हैं, 40 साल में रिटायर करेंगे तो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली मैं आ जाऊंगी qualaintel.com पर. क्वाला में अभी 25 साल की हूँ, 40 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और मेरी सैलरी 60,000 है. वैसे में आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताइए कि आगे जाकर क्या सेविंग्स हो सकती है मेरे लिए. क्वाला ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये दिखाया गया. तो आप सिर्फ मेरे बोलने पर मत जाइए, ट्राई इट योरसेल्फ.